आहे होतं आपल्यासोबत. तेच ना, सकाळी उठायचं यार, पुन्हा शाळेत जायचं, म्हणजे असं काहीतरी चेहरा मुलं करत होते. आणि काय काय करत होते यार, पुन्हा शाळेत जायचंय, मित्रांसोबत एन्जॉय करायचं आहे, मधली सुट्टीत खिचडी खायची, हे सब कुछ हम बचपन में करते थे. अँड बॅक टू स्कूल जाने का आज दिन आ चुका है. गर्मी की छुट्टियां एन्जॉय करने के बाद क्या कुछ किया गर्मी की छुट्टियों में, सभी बातें अपने दोस्तों को बताना है. नया क्लासरूम, नए टीचर, नए किताबें, नया यूनिफॉर्म, बट दोस्त वही पुराने. इनके साथ नए साल की शुरुआत आज होने वाली है. तो इस बात से ना एक वो गाना मुझे याद आता है जब बचपन में हम रेडियो पर सुना करते थे स्कूल जाने के टाइम. याद आया वो? चलिए फिर इसी गाने के साथ सोनू निगम की आवाज में गाना है, आज की मॉर्निंग को गुड करते हैं और स्कूल चले हम वाली फीलिंग को फिर से ताजा करते हैं. और बच्चे कंपनी, गुड लक फॉर नए साल के लिए, आपको अच्छे से पढ़ाई करना. गुड मॉर्निंग एंड स्टे ट्यून.

So, आज बहुत खास दिन है, आरजे अदनान आपके साथ है। और बात कुछ ऐसी है कि एमजीएम विद्यापीठाचे कुलपति माननीय अंकुशराव कदम सरांचा आज वाढदिवस आहे। तर सर, तुम्हाला माझ्याकडून आणि संपूर्ण टीम कडून वाढदिवसाच्या खूप खूप खूप मनापासून शुभेच्छा। देवाचरणी सर, हीच प्रार्थना की तुमचं आयुष्य एकदम सुदृढ असायला पाहिजे, निरोगी आयुष्य तुम्ही जगायला पाहिजे और सब तरीके की खुशियां आपके पास आनी चाहिए, यही दुआ करता हूँ। और स्पेशली आपकी सेहत हमेशा से बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन होती जाए, यही दुआ है। और सर, आप तो हम सबके रोल मॉडल तो हो ही, और आपकी मेहनत से ही आज एमजीएम इतने आसमान की ऊंचाइयों पर खड़ा है। सो थैंक यू सो मच सर उसके लिए, एंड फिर से एक बार तहे दिल से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

हिस्सों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गहरी खाई में गिर गया। लेकिन गिरते गिरते उसने एक पेड़ की टहनी पकड़ ली। अब वो लटका हुआ था, ऊपर चढ़ नहीं सकता, नीचे देखता है तो बहुत गहरा कुआं। वो चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ बचाओ। कुछ देर बाद एक शांत आवाज आई, मैं भगवान हूँ, छोड़ दो उस टहनी को, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर जोर से बोला, अरे कोई है भाई, मुझे बचाओ। हम सबकी जिंदगी कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हमें सिर्फ भरोसा करना होता है, खुद पर, ऊपर वाले पर, अपने अंदर की ताकत पर। लेकिन होता क्या है, हम डर जाते हैं और फिर उसी पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। कई बार जिंदगी कहती है, छोड़ दो, भरोसा करो, मैं हूं ना। लेकिन हम जवाब देते हैं, कोई और ऑप्शन है क्या हमारे पास? तो आज याद रखो, जिंदगी तब बदलती है जब तुम भरोसा करते हो। कभी कभी गिरने से बचने के लिए पकड़ने से ज्यादा छोड़ना जरूरी होता है। जब तक आप चीजों को छोड़ोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये जवानी ये दीवानी इस फिल्म के अंदर डायलॉग है ना, कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और ये किस्सों का कारवा कैसा लगता है बताइएगा जरूर DM कीजिए इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। और सुनते रहिए किस्सों का कारवा विद RJ अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: हम सब कहते हैं कि कल से जिम पक्का जाऊंगा, कल से हेल्दी खाना खाऊंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है, होता है ना ऐसा। हेल्दी लाइफ का मतलब सिक्स पैक या एकदम डाइट नहीं होता है, इसका मतलब होता है छोटी छोटी आदतों को अपनी लाइफ में लेकर आना और उस पर अमल करना। जैसे सुबह उठते ही फोन उठाने के बजाय एक गिलास पानी पीना, दिन में थोड़ा वॉक करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने माइंड को रेस्ट देना, आराम देना। क्योंकि दोस्तों अगर दिमाग हेल्दी नहीं तो बॉडी भी ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देती। और हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक जंक फूड कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ खाओगे तो बॉडी बोलेगी बॉस मेंटेनेंस तो चाहिए ही आप। तो एक सिंपल रूल याद रखो, हेल्थ इज नॉट एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आज से बस एक चेंज करो छोटा सा, जैसे 10 मिनट वॉक करेंगे या 5 मिनट मेडिटेशन, और देखना धीरे धीरे लाइफ खुद बदल जाएगी आपकी। तो आज का लाइफ मंत्र यही है कि अपने शरीर का ख्याल रखो, क्योंकि यही एक जगह है जहां आपको जिंदगी भर रहना होता है, समझे।
1: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
2: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
3: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA Multimedia Journalism, BA International Journalism एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG Diploma और MA Broadcast Communication। विजिट MGM Campus, N6 सिडको, छत्रपति।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश फरमाइश कोई भी हो, मैं वो पूरी करने के लिए आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ, हाजिर हूँ।
1: All is well. Morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MTM 90.8 FM. और आज के गाने की फरमाइश आई है वैष्णवी देशमुख जी की तरफ से इस गाने के लिए।
2: आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
0: आपकी आंखों में कुछ आए है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। सो चलिए फिर, ये गाना लिखा था गुलजार साहब ने और गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। सो फिर ये गाना अब फरमाइश में आया है तो वैष्णवी जी की फरमाइश पूरी की जा सकती है। सो मेरी जान, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 पर, बिंदास फरमाइश कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए तो बैठा हूँ। बाकी तो सुनते रहिए।

अभी हीच एक अपेक्षा. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM बंदे का नाम है अदनान. एंड 21st ऑफ जून को होने वाली है नीट की री एग्जाम, और इसके लिए भाई प्रशासन तो तैयार हो चुका है. एंड इस बार की नीट एग्जाम में थोड़ा चेंज आ चुका है. पेपर में नहीं, जिस तरीके से पहले एग्जाम होती थी उसी तरीके से होने वाली, लेकिन टाइम एक्स्ट्रा 15 मिनट अब स्टूडेंट्स के लिए मिलने वाला है. यानी कि 2 घंटे का जो पेपर होता था तो 2 घंटा 15 मिनट का भी पेपर कर दिया गया है. सो दोपहर 2 बजे पेपर शुरू होगा तो 5:15 तक यह पेपर चलेगा. अभी 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर टाइम मिले. एंड उनका जो टाइम वेस्ट होता था आंसर शीट के ऊपर नंबर लिखने में और सिग्नेचर करने में और भी बाकी ऑफिशियल काम करने में, तो वो 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया गया है. और इसी के साथ जो रफ वर्क करने के लिए जगह पहले छोटी थी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, अब वो जगह ज्यादा बड़ी कर दी गई है. यानी कि एक्स्ट्रा एक पेज ऐड किया है जिससे रफ वर्क करने के लिए भी आपको कोई दिक्कत ना आए. अब इतना सब कुछ नीट ने किया है तो बस ऐसी कुछ चेंजेस ना तो नीट पेपर लीक ना हो के लिए भी आपने करने चाहिए, ताकि ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो. एंड बच्चा कंपनीज, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए. अच्छे से आप एग्जाम देना, टेंशन फ्री रहना. स्टे ट्यून्ड.

0: खुलने वाले हैं, यूनिफॉर्म प्रेस हो रही है, नए बैग है, नई किताबें और बच्चों के मुंह ऐसे लटक गए हैं। लेकिन पता है, हमें सुनकर हंसी आती है और दिल में कई एक मीठी सी चुभन भी होती है। आरजे अदनान आपके साथ है, क्योंकि स्कूल का नाम सुनते ही ना अपना बचपन खिड़की से झांकने लगता है। सुबह मम्मी का जबरदस्ती उठाना, चल उठ वरना लेट हो जाएगा, वो आधी नींद में ब्रश करना और फिर दो बटन बंद करके स्कूल की ओर दौड़ लगाना। अपने बचपन में तो हम लोग रिक्शा से या पैदल या तो फिर साइकिल पे जाया करते थे। लंच बॉक्स में वो आलू की सब्जी जो हमें पसंद नहीं थी लेकिन दोस्तों को बहुत पसंद आती थी, और वो लेक्चर के बीच में ना पूरा टिफिन खा जाना और ब्रेक के अंदर खिचड़ी का इंतजार करना। और जब स्कूल का पहला दिन होता था ना छुट्टियों के बाद, तो बहुत से बच्चे स्कूल आते ही नहीं थे, दो तीन दिन के बाद आराम से स्कूल आना शुरू होते थे। लेकिन जो पहले दिन आता था और जिसने फर्स्ट डे आकर अपना बेंच पकड़ लिया, तो पूरे साल भर के लिए वो बेंच उसी का होता था। उस बेंच के ऊपर कोई और बैठ ही नहीं पाता था, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होती है, अपने आप वो बेंच आपका हो जाता था, क्योंकि सबसे पहले आपने वो ढूंढा था और वो आपने अपने नाम पर कर लिया था। ये होता था बचपन का स्कूल। यार बचपन में यार स्कूल जाने का मन नहीं करता था, सोचते थे कि यार क्या ही स्कूल जाना। लेकिन आज ना तो यादों की अलमारी में देखे तो लगता है कि यार स्कूल के दिन बहुत ही बेहतरीन थे। खैर आप वो तो यादें बन के रह गई है, बट आज से बैक टू स्कूल, गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई और नया साल, नई क्लास, नई किताबें और पुराने दोस्तों के साथ नया स्कूल का सफर सभी बच्चों का शुरू हो रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, स्कूल की लाइफ जीते रहिएगा, ये बार बार नहीं आती है। बाकी तो सुनते रहिएगा MGM 90.8 FM। प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
0: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप,
0: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

मौसम के मूड स्विंग्स आपने सुने, ये आजकल अपने शहर में हो रहा है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। एंड मूड स्विंग की बात करें तो भाई, मौसम जैसे मूड स्विंग्स तो किसी की होते ही नहीं है, क्योंकि जून महीने के अंदर भी हमें मई वाली फीलिंग ये मौसम दे रहा है। एंड कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है कि कभी बहुत जोर से हवाएं छूट रही है, तो कभी बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो कभी बहुत गर्मी हो रही है। फिलहाल अपने छत्रपति संभाजीनगर में ऐसा ही नजर आ रहा है। दिन के टाइम पर ना तो अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो दोपहर होते होते टेम्परेचर 39-40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, और शाम के वक्त ना इतनी जोर से हवाएं चलती है।

बात कब आएगी सुकून वाली, ये तो हवामान विभाग को भी ठीक से नहीं पता, तो मैं क्या ही बता सकता हूँ। आपकी तबीयत ना खराब हो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। देखो आपके बंदे या बंदियों को आपकी इतनी फिक्र नहीं होगी जितनी फिक्र मुझे आपकी है, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, ऐसा समझिएगा, समझे। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल।

0: लेट्स टॉक अबाउट करियर। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। बंदे का नाम है अदनान और काम है आपका मनोरंजन करना और आपको इन्फॉर्मेशन भी देना, यानी कि इंफोटेनमेंट करना। करियर कंटा इस सेगमेंट में हम बात करते हैं करियर के बारे में। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में और आर्किटेक्चर में करियर फील्ड कौन कौन से है, किस तरीके से आर्किटेक्चर फील्ड होती है, आप इसमें कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ही नहीं पता। वो इन्फॉर्मेशन मैं भी आज जानूंगा और आपको भी वो पता चलेगी। अपने साथ ही प्रोफेसर आर्किटेक्ट अब्राहम पेत्रो सर। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो मिस्टर अदनान, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी।
0: सर कैसे हो सर आप?
1: बढ़िया,
0: एकदम बढ़िया। सबसे पहले मुझे आपके बारे में बताइएगा कि आप इस फील्ड में कब से आए हो।
1: मेरा सफर मिस्टर अदनान एक काफी रोचक और इंटरेस्टिंग रहा है। कुछ ऐसा कोर्स चाहिए था जिसमें मैथ्स और साइंस बहुत ज्यादा ना हो, सो 12th स्टैंडर्ड के बाद मुझे आर्किटेक्चर एक ऐसा कोर्स JNEC और मैंने उस करियर को आगे कंटिन्यू किया और मुझे पहले से ड्राइंग में, आर्ट्स में, स्केचिंग में और 3D व्यूज बनाने में काफी इंटरेस्ट था और इस कोर्स ने मुझे वो चीज को काफी अच्छे से कंटिन्यू करने में हेल्प किया और आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में रेगुलर फैकल्टी हूँ आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 25 years।
0: और सर 5 साल का ड्यूरेशन काफी लंबा लगता है, तो क्या इस टाइम बहुत डिफिकल्ट है क्या?
1: ये 5 साल का जो कोर्स है ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर डिसाइड करती है और वैसे सुनने में काफी बड़ा लगता है बट MBBS से भी कम है और पूरे कोर्स में काफी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो एक स्टूडेंट के करियर को और उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है और इसमें ड्राइंग, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, विजुअल आर्ट्स और काफी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं रिगार्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एक स्टूडेंट को काफी एंगेज रखता है और वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाता है।
0: और सर बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है?
1: कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है और साथ में केमिस्ट्री या बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज में से कोई एक सब्जेक्ट उनका होना चाहिए पहले से। 12th में मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। साथ ही 10+3 डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं, उनमें मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए और मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। बाद में कैंडिडेट्स को NATA जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर होता है उसे क्वालिफाई करना होता है।
0: और सर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं आपके पास?
1: एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स होने चाहिए, 80 स्टूडेंट्स, जिनमें से पर बैच मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स होते हैं।
0: आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में और भी हम ढेर सारी बातें जानेंगे कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून।

0: लेट्स टॉक अबाउट करियर। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और आज हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में, करियर के बारे में। और हमारे साथ है MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग से प्रोफेसर आर्किटेक्ट अब्राहम पेत्रोस सर। और सर, आर्किटेक्ट के सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल होते हैं या ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं?
1: बिल्कुल नहीं, ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें पढ़ाई के अलावा कई सारे साइट विजिट्स प्लान किए जाते हैं। जो सिटी में जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं उनके साइट्स देखने का मौका मिलता है, वो कॉलेज में आते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को एजुकेशनल टूर पर ले जाया जाता है बाहर, और कई सारे सिटी और बाहर के प्रोजेक्ट्स देखकर बच्चे अपने टैलेंट और नॉलेज को काफ़ी डेवलप करते हैं। एनुअल गैदरिंग भी होता है इसमें, जिसमें बच्चे अपना टैलेंट कल्चरल शो के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। जिनको डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, वो अपने करियर पाथ में एक एड ऑन कर सकते हैं और अपने पैशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
0: एंड सर, आर्किटेक्ट ये फील्ड है या थोड़ी आउटडोर वर्किंग की फील्ड है, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो अक्सर ऐसा सोचते हैं लोग कि ये बस बॉयज के लिए हो सकता है, तो इसके ऊपर क्या आपके थॉट है?
1: देखिए, मेरे 36 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा करके गर्ल्स इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। उसमें कई सारे रीज़न हैं कि बॉयज़ तो ऑफकोर्स सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और वो कहीं ट्रैवल करके अपने करियर को डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के थ्रू बिल्डिंग डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, लैंडस्केप डिज़ाइन, एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, हेरिटेज कंजर्वेशन, आर्किटेक्चरल जर्नलिज्म, 3D विजुअलाइजेशन और मॉडर्न ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज तक अवेलेबल हैं। इन सब के लिए उस आर्किटेक्ट का एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट होना जरूरी है, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर 5 साल के बाद एक रजिस्ट्रेशन मिलता है।
0: ओके, प्रोफेसर अब्राहम पेत्रोस सर के साथ हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे अबाउट आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM एंड करियर कट्टा में हम MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। हमारे साथ है प्रोफेसर आर्किटेक्ट अब्राहम पेट्रोस।
1: और सर, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, हर एक चीज का बेनिफिट होता है, तो आर्किटेक्ट बनने का बेनिफिट क्या है?
2: सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि ये एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स नहीं है, बल्कि 5 साल का आर्किटेक्चर का एक कोर्स है, जिसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ऑल इंडिया लेवल पे और इवन इंटरनेशनल लेवल पे एक रजिस्टर्ड चार्टर्ड आर्किटेक्ट के तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें आपकी पर्सनल आइडेंटिटी आपके प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं।
0: और सर, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को सिर्फ प्राइवेट कंसल्टेंट के रूप में काम करना होता है क्या?
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस्टर अदनान। आर्किटेक्ट प्राइवेट प्रैक्टिस या लीडिंग आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी फर्म में काम करने के अलावा गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं, जैसे कि सिडको, माडा, टाउन प्लानिंग ऑफिसेस, PWD, MMRDA, BMRDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज, ऐसे कई सारे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं। और इसके अलावा इंडिया में प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये आउट ऑफ इंडिया जाकर अब्रॉड में भी अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं।
0: आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में और भी ढेर सारी बातें हम जानेंगे कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून्ड। पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
0: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
0: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: आर्किटेक्चर इस फील्ड में अगर आपको करियर करना है तो आप सही जगह पहुंच चुके हो। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और करियर कट्टा में हम आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में जान रहे हैं MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोफेसर आर्किटेक्ट अब्राहम पेत्रोस सर के साथ। और सर, बैचलर डिग्री के बाद मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट करना जरूरी होता है क्या?
1: बैचलर्स डिग्री 5 ईयर्स के कोर्स के बाद आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बन जाता है काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई के फ्लो में और कंटिन्यूएशन में है, ये बेहतर रहेगा कि वो इन कंटिन्यूएशन अपना मास्टर्स कंप्लीट कर ले ताकि बाद में पढ़ाई में जो दिक्कतें या डिफिकल्टी आती है वो फेस ना करना पड़े। अगर उनको एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करना हो जैसे एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, हेरिटेज कंजर्वेशन, टाउन प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइन किसी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट से,

0: अगर वो ज्वाइन करते हैं तो एज पर गवर्नमेंट स्केल्स उनकी सैलरी होती
1: है। सो अपनी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में और भी कुछ नई बातें हम जानेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। स्टे ट्यून।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: बैठने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए।

0: रखना
1: है ना तुम होगी।
2: हेलो हाय नमस्कार छत्रपति संभाजी नगर
3: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपका सोमवार अच्छा बीत रहा होगा। वीकेंड की मस्ती और आराम के बाद आज की एक नई शुरुआत है। सोमवार की शाम हमें याद दिलाती है कि हर नया हफ्ता अपने साथ नए अवसर, नए सपने और कुछ नया करने की एनर्जी लेकर आते हैं। दिन भर की भागदौड़, काम और जिम्मेदारियों के बाद अब समय है थोड़ा सुकून पाने का, खुद के लिए कुछ पल निकालने का और संगीत के साथ अपनी शाम को और भी खूबसूरत बनाने का। अगर आपका दिन थोड़ा व्यस्त रहा है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ शानदार गाने, दिलचस्प बातें और भरपूर मनोरंजन। जिंदगी में हर दिन एक नया मौका होता है आगे बढ़ने का, इसीलिए बीते हुए दिन की थकान को पीछे छोड़िए और नए सप्ताह का स्वागत एक सकारात्मक सोच के और मुस्कान के साथ कीजिए। याद रखिए, छोटी छोटी खुशियां ही हमारी जिंदगी को खास बनाती है। तो चाहे आप घर लौट रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हो या अपने पसंदीदा काम में व्यस्त हो, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी इस सोमवार की शाम को और भी यादगार बनाने वाले हैं बेहतरीन गीतों और शानदार संगीत के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शाम का ये खूबसूरत समय अक्सर हमें खास बात याद दिलाता है। हर शाम अपने साथ एक दूसरा मौका लेकर आती है। सुबह जब दिन शुरू होता है तो हम कई उम्मीदें और प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ हमारी सोच के अनुसार नहीं होता। कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ बातें मन के मुताबिक नहीं हो पाती और कभी कभी हम खुद से भी थोड़ा निराश हो जाते हैं। लेकिन शाम हमें ये एहसास कराती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये दिन का आखिरी पड़ाव नहीं बल्कि खुद को फिर से संभालने का एक अवसर है। ये समय है रुक कर सोचने का, दिन भर के अनुभव से सीखने का और कल के लिए नई एनर्जी जुटाने का। जिंदगी भी कुछ ऐसी होती है, इसमें हर दिन हर मोड़ और हर चुनौती हमें एक नया अवसर देती है। अगर आज कुछ छूट गया तो कल फिर कोशिश की जा सकती है, अगर आज हम हार गए तो कल फिर जीत की शुरुआत हो सकती है। सूरज हर शाम ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर पूरी रोशनी के साथ लौटती है। शायद यही प्रकृति का सबसे खूबसूरत मैसेज है हमारे लिए कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। तो इस शाम दिन भर की थकान और परेशानियों को थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए, अपने लिए कुछ पल निकालिए, मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए कि आप अभी भी अपनी कहानी लिख रहे हैं और सुन रहे हैं MG 94.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कभी आपने गौर किया है कि दुनिया के ज़्यादातर क्रिएटिव लोग थोड़े अलग होते हैं। उनकी सोच, उनकी आदतें और उनकी चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया आम लोगों से थोड़ा हटकर होता है। कई बार लोग मजाक में कहते हैं, यार क्रिएटिव बनने के लिए थोड़ा पागल होना पड़ता है, और सच कहे तो इसमें थोड़ी सच्चाई भी छुपी हुई है। यहाँ पागलपन का मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है बड़ी कल्पनाएं करने की हिम्मत, नए रास्तों पर चलने का साहस और वहाँ देखने की क्षमता जो बाकी लोग नहीं देख सकते। जब कोई कलाकार एक खाली कैनवास में पूरी दुनिया देख लेता है, जब कोई लेखक एक छोटे से विचार से पूरी कहानी बना देता है, या जब कोई संगीतकार खामोशी में भी धुन सुन लेता है, तो वो साधारण सोच से थोड़ा आगे निकल चुके होते हैं। क्रिएटिव लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और असफल होने से डरते नहीं। कई बार उनकी बातें या उनके सपने दूसरों को अजीब लग सकते हैं, लेकिन यही अलग सोच दुनिया में नए विचार और नए बदलाव लेकर आती है। हम सभी के अंदर एक क्रिएटिव इंसान छुपा होता है, बस ज़रूरत है अपने विचारों को खुलकर जीने की, अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने की और कभी कभी ये चिंता छोड़ देने की कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि दुनिया की कई खूबसूरत खोजें, बेहतरीन गीत, शानदार किताबें और अनोखे इन्वेंशन उन लोगों ने किए हैं जिन्हें कभी ना कभी किसी ने थोड़ा पागल जरूर कहा है। आप इन बातों को याद रखिए और सुनते रहिए एमजे मनाड़ी पॉइंट एफएम, साथ ही दो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। फिलहाल मैं जिस गाने के बारे में बात कर रही हूँ वो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास है। मैं बात कर रही हूँ छैया छैया इस गाने की। आज भी सुनते ही एनर्जी, सफ़र और आज़ादी का एहसास दिलाता है। इस गाने की सबसे खास बात है इसकी खूबसूरत शायरी, शब्द ऐसे जो प्यार को किसी एक जगह या एक रूप में नहीं बांधते बल्कि उसे एक यात्रा की तरह देखते हैं। गीत हमें बताता है कि जब दिल में मोहब्बत हो तो रास्ते आसान लगने लगते हैं और मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत हो जाता है। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये गीत लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इसकी धुन, इसके बोल और इसका जोश सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ सपने भी, उम्मीद भी और ज़िंदगी को खुलकर जीने का संदेश भी हमें मिलता है। कुछ गाने समय के साथ पुराने नहीं होते, वो हर जनरेशन को कुछ नया महसूस कराते हैं और छैया छैया उन्हीं चुनिंदा गानों में से एक है। आप सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याच्या खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। अगर आप इस समय सड़क पर है, किसी सिग्नल पर रुके हुए हैं या धीरे धीरे ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात शायद आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि ट्रैफिक सिर्फ गाड़ियों की भीड़ नहीं बल्कि धैर्य की भी परीक्षा होती है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, मंजिल तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सामने लंबी कतार, रेड सिग्नल और हॉर्न की आवाजें हमारा मूड खराब कर देती है। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है और छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ट्रैफिक में फंस जाने से समय तेजी से चलने लगेगा? शायद नहीं। ऐसे समय में सबसे अच्छी चीज है खुद को शांत रखना। गहरी सांस लीजिए, अपना मन पसंदीदा गाना सुनिए और इस समय को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कीजिए। जिंदगी भी कभी कभी ट्रैफिक की तरह होती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ रुकावटें आ जाती है, तब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन सच कहे तो रास्ते बंद नहीं होते, बस गति थोड़ी धीमी हो जाती है। मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी सुरक्षित और मुस्कुराते हुए पहुंचना जरूरी है। इसलिए ट्रैफिक का तनाव अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, नियमों का पालन कीजिए और ऑफकोर्स सुनते रहिए एमजे मनाली पौंडी एफएम, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। तो आखिरकार वीकेंड की छुट्टियां खत्म हो गई है और आज फिर से ऑफिस मीटिंग्स ईमेल्स और डेडलाइंस वाला मोड ऑन हो चुका है। सच कहे तो वीकेंड के बाद पहला ऑफिस डे थोड़ा मुश्किल लगता है। सुबह का अलार्म दुश्मन जैसा लगता है, बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता और ऑफिस पहुंचते पहुंचते यही सोचते हैं कि दो दिन की छुट्टी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ नया हफ्ता अपने साथ नई शुरुआत भी लेकर आता है, नए लक्ष्य, नए प्लान और कुछ नया हासिल करने का मौका। वीकेंड हमें आराम देता है और सोमवार हमें आगे बढ़ने का याद दिलाता है। कई बार हम सोमवार को बोझ की तरह देखते हैं, लेकिन अगर नजरिया बदल दे तो यकीन मानिए दिन पूरे हफ्ते की दिशा तय करता है। एक अच्छी शुरुआत, एक पॉजिटिव सोच और चेहरे पर एक मुस्कान पूरे दिन को बेहतर बना सकती है। और हाँ, अगर आज काम थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो खुद पर ज्यादा दबाव मत डालिए, एक एक कदम आगे बढ़ाइए। सारे काम एक साथ नहीं लेकिन धीरे धीरे जरूर पूरे हो जाएंगे। चाहे आप ऑफिस में हो, रास्ते में हो या अभी अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, इस नए हफ्ते का स्वागत पूरे उत्साह के साथ कीजिए और ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजी 90.8 FM, साथ ही तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। नया हफ्ता शुरू हो चुका है, कुछ लोग पूरे जोश के साथ अपने काम में जुट गए हैं तो कुछ अभी भी वीकेंड के मूड से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और कामयाब इंसान में अक्सर देखने को मिलती है वो है प्लानिंग। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिना प्लान के हफ्ता शुरू करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। रास्ता तो मिल जाएगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लग सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अगर हम 10-15 मिनट निकाल कर अपने जरूरी काम लिखे या प्रायोरिटीज को समझे और छोटे छोटे गोल्स बना ले तो कई चीजें आसान हो सकती है। इससे न सिर्फ काम समय पर पूरे होते हैं बल्कि तनाव भी कम होते हैं। और याद रखिए, प्लानिंग का मतलब हर मिनट को बांध देना नहीं बल्कि अपने समय को इस तरह मैनेज करना होता है कि काम भी हो जाए और खुद के लिए समय भी बचा पाए। जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से शुरू होते हैं और हफ्ते की एक अच्छी प्लानिंग भी ऐसी ही एक आदत है। यह आपको ज्यादा फोकस, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा संतुलित बना सकती है। तो इस हफ्ते खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, सिर्फ काम करने का नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने का। एंड ऑफकोर्स अपनी डायरेक्शन को साफ साफ देखिए, आगे बढ़िए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

31 सोमवार की शाम भी आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 एफएम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अभी कुछ देर पहले तक हम नए हफ्ते की शुरुआत की बात कर रहे थे और अब समय है इस शाम को मुस्कुराते हुए विदा कहने का। सोमवार को अक्सर लोग थोड़ा मुश्किल दिन मानते हैं। वीकेंड की छुट्टियों के बाद काम पर लौटना, नई जिम्मेदारियों और पूरे हफ्ते की तैयारी, लेकिन अगर गौर करें तो सोमवार हमें एक नई शुरुआत का मौका भी देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर हफ्ता अपने साथ नई

0: उम्मीदें और नए अवसर लेकर आता है। अगर आज आपका दिन शानदार रहा तो उसकी खुशियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़िए, और अगर कुछ बातें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो उन्हें यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि कल एक नया दिन है, नई एनर्जी है और खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका है। जिंदगी का सफर भी कुछ ऐसा ही है, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है, इसलिए बीते हुए पलों को शुक्रिया कहिए और आने वाले कल का स्वागत कीजिए, वो भी पूरे स्वैग से। तो इस सोमवार की शाम को अलविदा कहते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखिए, दिल में उम्मीद रखिए और भरोसा रखिए कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कुछ अच्छा जरूर लेकर आएगा। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ ही तो बात
1: पाड़ी प्राणायाम चारों ज्ञाता खास काळजी एमजीएम पेट केयर पेट क्लिनिक आरोग्य तपासणी उपचार शस्त्रक्रिया लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6 कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130 एमजीएम पेट केयर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: Let's talk about career. You are listening to MGM 90.8 FM. बंदे का नाम है अदनान और काम है आपका मनोरंजन करना और आपको इन्फॉर्मेशन भी देना यानी कि इन्फोटेनमेंट करना. करियर कंटा इस सेगमेंट में हम बात करते हैं करियर के बारे में. आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में और आर्किटेक्चर में करियर फील्ड कौन कौन से है, किस तरीके से आर्किटेक्चर फील्ड होती है, आप इसमें कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ही नहीं पता. वो इन्फॉर्मेशन मैं भी आज जानूंगा और आपको भी वो पता चलेगी. अपने साथ है प्रोफेसर आर्किटेक्ट अब्राहम पेत्रोस सर. हेलो सर, आपका स्वागत है.
1: हेलो मिस्टर अदनान, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी.
0: सर कैसे हो सर आप?
1: बढ़िया,
0: एकदम बढ़िया. सबसे पहले मुझे आपके बारे में बताइएगा कि आप इस फील्ड में कब से आए हो.
1: मेरा सफर मिस्टर अदनान एक काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग रहा है. कुछ ऐसा स्कोर चाहिए था जिसमें मैथ्स और साइंस बहुत ज़्यादा ना हो. सो 12th स्टैंडर्ड के बाद मुझे आर्किटेक्चर एक ऐसा कोर्स JNEC और मैंने उस कैरियर को आगे कंटिन्यू किया और मुझे पहले से ड्राइंग में, आर्ट्स में, स्केचिंग में और 3D व्यूज बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट था और इस कोर्स ने मुझे वो चीज़ को काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू करने में हेल्प किया और आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में रेगुलर फैकल्टी हूँ आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 25 ईयर्स.
0: और सर 5 साल का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा लगता है, तो क्या ये स्ट्रीम बहुत डिफिकल्ट है क्या?
1: ये 5 साल का जो कोर्स है ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर डिसाइड करती है और वैसे सुनने में काफ़ी बड़ा लगता है बट MBBS से भी कम है और पूरे कोर्स में काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो एक स्टूडेंट के कैरियर को और उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है और इसमें ड्राइंग, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, विजुअल आर्ट्स और काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं रिगार्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. एक स्टूडेंट को काफ़ी एंगेज रखता है और वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाता है.
0: और सर बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है?
1: कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है और साथ में केमिस्ट्री या बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज में से कोई एक सब्जेक्ट उनका होना चाहिए पहले से. 12th में मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए. साथ ही 10+3 डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं. उनमें मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए और मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए. बाद बल होते हैं उनमें मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए और मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए. बाद में कैंडिडेट्स को नाटा जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर होता है उसे क्वालिफाई करना होता है.
0: और सर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं आपके पास?
1: एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स होने चाहिए, 80 स्टूडेंट्स, जिनमें से पर बैच मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स होते हैं.
0: आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में और भी हम ढेर सारी बातें जानेंगे कुछ ही देर में. तब तक स्टे ट्यून्ड.

0: लेट्स टॉक अबाउट करियर। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और आज हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में, करियर के बारे में। और हमारे साथ है MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग से प्रोफेसर आर्किटेक्ट अब्राहम पेत्रोस सर। और सर, आर्किटेक्ट के सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल होते हैं या ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं?
1: बिल्कुल नहीं, ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें पढ़ाई के अलावा कई सारे साइट विजिट्स प्लान किए जाते हैं। जो सिटी में जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं उनके साइट्स देखने का मौका मिलता है, वो कॉलेज में आते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को एजुकेशनल टूर पर ले जाया जाता है बाहर, और कई सारे सिटी और बाहर के प्रोजेक्ट्स देखकर बच्चे अपने टैलेंट और नॉलेज को काफ़ी डेवलप करते हैं। एनुअल गैदरिंग भी होता है इसमें, जिसमें बच्चे अपना टैलेंट कल्चरल शो के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। जिनको डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, वो अपने करियर पाथ में एक एड ऑन कर सकते हैं और अपने पैशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
0: एंड सर, आर्किटेक्ट ये फील्ड है या थोड़ी आउटडोर वर्किंग की फील्ड है, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो अक्सर ऐसा सोचते हैं लोग कि ये बस बॉयज के लिए हो सकता है, तो इसके ऊपर क्या आपके थॉट है?
1: देखिए, मेरे 36 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा करके गर्ल्स इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। उसमें कई सारे रीज़न हैं कि बॉयज़ तो ऑफकोर्स सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और वो कहीं ट्रैवल करके अपने करियर को डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के थ्रू बिल्डिंग डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, लैंडस्केप डिज़ाइन, एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, हेरिटेज कॉन्जर्वेशन, आर्किटेक्चरल जर्नलिज्म, 3D विजुअलाइजेशन और मॉडर्न ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज तक अवेलेबल हैं। इन सब के लिए उस आर्किटेक्ट का एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट होना जरूरी है, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर 5 साल के बाद एक रजिस्ट्रेशन मिलता है।
0: ओके, प्रोफेसर अब्राहम पेत्रोस सर के साथ हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे अबाउट आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: Philip.
1: Welcome back. You are listening MGM 90.8 FM and Career Katta में हम MGM University के departments के बारे में बात करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं Department of Architecture. हमारे साथ है Professor Architect Abraham Petros. और सर सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, हर एक चीज का बेनिफिट होता है, तो आर्किटेक्ट बनने का बेनिफिट क्या है?
2: सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि ये एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स नहीं है, बल्कि 5 साल का आर्किटेक्चर का एक कोर्स है जिसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ऑल इंडिया लेवल पे और इवन इंटरनेशनल लेवल पे एक रजिस्टर्ड चार्टर्ड आर्किटेक्ट के तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें आपकी पर्सनल आइडेंटिटी आपके प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं.
1: और सर रजिस्टर आर्किटेक्ट को सिर्फ प्राइवेट कंसल्टेंट के रूप में काम करना होता है क्या?
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस्टर अदनान. आर्किटेक्ट प्राइवेट प्रैक्टिस या लीडिंग आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी फर्म में काम करने के अलावा गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं, जैसे कि सिडको, माडा, टाउन प्लानिंग ऑफिसेस, पीडब्ल्यूडी, एमएमआरडीए, डीएमआरडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज, ऐसे कई सारे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं. और इसके अलावा इंडिया में प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये आउट ऑफ इंडिया जाकर अब्रॉड में भी अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं.
1: आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में और भी ढेर सारी बातें हम जानेंगे कुछ ही देर में. तब तक देखिए.

0: आर्किटेक्चर इस फील्ड में अगर आपको करियर करना है तो आप सही जगह पहुंच चुके हो। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और करियर कट्टा में हम आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में जान रहे हैं MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोफेसर आर्किटेक्ट अब्राहम पेट्रोस सर के साथ। और सर, बैचलर डिग्री के बाद मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट करना जरूरी होता है क्या?
1: बैचलर्स डिग्री 5 ईयर्स के कोर्स के बाद आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बन जाता है काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई के फ्लो में और कंटिन्यूएशन में है, ये बेहतर रहेगा कि वो इन कंटिन्यूएशन अपना मास्टर्स कंप्लीट कर ले ताकि बाद में पढ़ाई में जो दिक्कतें या डिफिकल्टी आती है वो फेस ना करना पड़े। अगर उनको एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करना हो जैसे एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, हेरिटेज कंजर्वेशन, टाउन प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, किसी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करके अपना करियर पाथ स्पेशलाइज कर सकते हैं।
0: और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम पढ़ाई करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो आर्किटेक्ट कितना अर्न कर सकता है?
1: इनिशियल स्टेज पर छोटे शहरों में 15,000 से उनकी कमाई स्टार्ट हो सकती है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है, और बड़े शहरों में 40,000 से 50,000 पर मंथ तक उनकी सैलरी हो सकती है। बाद में वो एसोसिएट या जूनियर आर्किटेक्ट के तौर पर 75,000 से 1 लाख पर मंथ तक कमा सकते हैं, और फ्रीलांस कंसल्टेंसी के थ्रू 3 से 5 लाख पर मंथ तक वो आराम से कमा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब अगर वो ज्वाइन करते हैं तो एज पर गवर्नमेंट स्केल्स उनकी सैलरी होती है।
0: सो अपनी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में और भी कुछ नई बातें हम जानेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: Let's talk about career. You're listening to MGM 90.8 FM and career कट्टा में हम बात करते हैं MGM University के department के बारे में और आज हम बात कर रहे हैं department of architecture और architecture में career opportunities क्या है इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है professor architect Abraham Petros और sir sportsman architect pursue करते हुए अपना sports continue कर सकता है
1: Oh yes, बिल्कुल स्टूडेंट स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट्स और मार्क्स भी मिलते हैं MGM यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में वेल इक्विप्ड जिमनेजियम स्विमिंग पूल स्टेडियम और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं जिससे स्टूडेंट्स अपनी स्पोर्ट्स जर्नी कंटिन्यू कर सकते
0: सर आर्किटेक्चर का स्टूडेंट पैरेलल स्किल्स भी डेवलप कर सकता है
1: हाँ डेफिनेटली एकेडमिक करिकुलम ऐसे प्लान किया जाता है कि स्टूडेंट 90 से ज्यादा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एज अ हॉबी अपना चूज कर सकता है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे कि पॉटरी ड्रामा टेक्सटाइल डिजाइनिंग सेट डिजाइनिंग फिल्म टेक्नोलॉजी कलिनरी और कई सारे और इलेक्टिव्स हैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए नासा जैसे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जहाँ वो अपने कैलिबर को प्रूव कर सकते हैं एनुअल गैदरिंग्स और कल्चरल इवेंट्स उनका कॉन्फिडेंस और स्टेज करेज बढ़ाते हैं और सिटी और आउट सिटी लेवल जो एजुकेशन टूर्स होते हैं उससे भी उनको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है और उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है
0: कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट ग्रेजुएशन के बाद और करियर के ऑप्शंस होते हैं
1: आर्किटेक्चर सिर्फ प्लानिंग और बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है ये 5 साल का एक रिगरस कोर्स है जो एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को डेवलप करता है कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे जाकर अपने करियर को फैशन इंडस्ट्री प्रोडक्ट डिजाइनिंग आर्ट एग्जीबिशन मूवी और टीवी शोज में सेट डिजाइन करना एनिमेशन वर्चुअल रियलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूजिक ड्रामा और डांस जैसे फील्ड्स में अपने आप को डेवलप किया है
0: थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक्स लॉट बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हमें पता चली अबाउट आर्किटेक्चर इस फील्ड के बारे में आई होप कि जिन स्टूडेंट्स को ना तो आर्किटेक्चर फील्ड में अपना करियर बनाना है तो वो एक बार जरूर MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में विजिट कीजिएगा आपके मन में जो भी सवाल हो आप डायरेक्टली सर को सामने पूछ सकते हैं और भी बहुत सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन सर देगी जब आप यहाँ पर विजिट करोगे डू विजिट MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर
1: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अदनान आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया मुझे मेरी जर्नी को शेयर करने के लिए और जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर करियर को परस्यू करना चाहते हैं उनको एंकरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: स्टे ट्यून्ड

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

खुश बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

आशिक बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं जा।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुनो सुनो ए भाई और बहनो, परमगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।